याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अपसतुटु सिहि करनो तुमियगे।

याज्ञा करम है सर्वबलदारियु अनाति अनंतु दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थानयक वनलेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त करदी वदाला वेद अपसतु सिहिकरनो तुमीगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन्हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।

0: हमाला हेतलियाली हमाला तिले बेले ई खाती हाले हमाला तिले आले खाती आला हे के तिले मेना बाहतिला वेले वसुत बाला खडा वाली बा हे मेने ले थे बाहतिला दे देला सोए नवतले दिन अशुत बाला येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: रे के रामा खातिला रे तेरे बे
0: ई हमाला के तियाले हमा
1: तेरे बे दे दे बाहतिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबने सुति वेवा स्वामीन वास ओबान सी उदाउ करान ने किने कनात